0: Hela Nashala. Hela Nashala.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: ޒުވާން ޢުމުރުގެ ފިލްމީ ދާއިރައިން ކާމިޔާބު ހޯދީ ބެންގާލީ ފިލްމުތަކުން ފިލްމީ ކެރިއަރ ފެށީ ޝަރުމިލާ ހިންދީ ސިނެމާ ތަޢާރުފުމުގެ ކުރިން ބެންގާލީގެ ގިނަ ކްލެސިކް ފިލްމުތަކުން ފެނިގެން ދިޔަ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ މީހުން ޝަރުމިލާ ސިފަކުރީ ލޯބީގެ ފިލްމުތަ ކުޅުމަށް ކުޅަދާނަ ބަތަލާއިގެ ގޮތުގަ ނަމވެސް ފަހުން ލެޖެންޑަރީ ބަތަލާއިކަށް ވެފަވަނީ ސުޕަރް ސްޓާ ރާޖޭޝް ކަންނާޔާއިކު ކުޅުނު ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކުގެ ސަބަބުން
1: क्यों क्या हुआ
2: आपको मालूम है शादी से पहले रीता मेरे पति पर मरती थी और अब भी उनके पीछे पड़ी है
1: आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं
2: आप भले आदमी हैं लेकिन रीता का मेरे पति के साथ मिलना जुलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता
1: नॉनसेंस
0: शर्मिला टागोर के मशहूर क्रिकेट कुलंतरिया मंसूर अली खान पटोड़ी के अंबी मिया आदि में कैवनवनी सैफ अली खान आदि सोबा अली खान लिबिफा ಶಮ್ಮಿ ಕಪೂರ್ ಆಕು ಗಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ತಾಕುಂ ಫೆನುಂ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೇ ಫಸ್ತುಲೋಹುಗೆ ಅಹರುತವುಗಾ ಶರ್ಮಿಲಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಸಬಕ ನಮ್ವಿಸ್ ಏಗೆ ಫಹುಂ ಏನಾ ಕುಳಮುಂ ಆ ತಫಾತು ಜೋನ್ರಾಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತಾಕುಂ ಶರ್ಮಿಲಾ ಕಿ ಕುಳದಾನ ಎಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆಗುತುಗ ಗಿನ ಬಯಕ ಫಾಹಗ ವೆಗೆನ್ ದಿಯ

0: नुआ दिया है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम ईशान अमादो वागुतु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: ईशा सुवाने कुरंता
1: कोब्बला
0: दिवे ही बहुगा सुकुं कुरे वेया कुरता की कोबा
2: अलिफु सीनु नूनु ता शवियन
0: रंगलो फेमवेरुं एमे मैक को बुनाने की हिने
2: नाने फुलफिल लेवो
0: वारर रंगलो वेहे ता फेंडिगु में बुनमा की कोबा
2: लिबे फुर्सत के बेनुं हिफु माड़ कोब्बला की कुरं कुरा सुवाले तमे
0: मी तैयार वानी दिवे ही फेमुं गेनस्ते शवियनी प्रोग्राम
2: शवियनी प्रोग्रामे दिवे ही बहुगा सुवालो अन्ना कोंगे ने को अन्ने नी
0: कों में हुकुरु आदि होनी हेरु दोहे गिरे अग्गड़ी तीरी हुगा
3: शावियन

0: Game on!
1: ودیکے میں گھر ستیوے فیو میگڑی گل میں کوریا گیندا گیم اون می ہفتہ گے شو گرا یا فرتم بایے جہلم میولے نی رایا اے کی ورا می کمپٹیٹیو وانگولے فنانے کے شہو گونانی ایکم کو وکی حساب کو کانفیڈنس کڑو کو دوا حساب می میتی روا فنانے کے شہو گونانی اے کوری کے تجربہ گا دی گے ایکم می فہارو رایا واد کورم می جہنی شہو کا ویس نو اہم فنانہ کا ویس نو خود رایا اے کا ویس نو واگوتا
2: Beat the buzzer. Beat the buzzer.
1: Mehar beat kol de mijeni buzzer. Buzzer ke me buni m minute ke vagu to me deni m minute ke vagu to ke there garaya kol de me kam ki shahu dena daira. ए दायरा ग हम बेवर जवाब हुन्ना ने हम बोलंग अन्नवर को जवाब तक किया द मुंदा में आदि मिवी हातनक मी मी सेगमेंट के एम ए हाई स्कोर बीट अनु करवे एवस फन्नानक शारिफ एम ए हाई स्कोर को फमी वणी सर्विस जवाब शारिफ दे एम मी राय एम स्कोर बीट करवे न क म उम्मीद में करे नी ए मता यार दो एक एक दायरा ते कि फन्नानो न मिदे ने कम कोम में फन्नाने से में कॉन्फिडेंट वा दायरा शहु देवे तो में बदन फिल्म बलावळे दो
3: यस बलावळे
1: राज एक फिल्म में फन्नानो ने गे न दो
3: यस
1: ओके एम में मता यार वेच या मिदे ने हिंट फशाण में गे वगुत फशा फ एम मिनट उगे वगुत फेने दो
3: ओके
1: मकरे न आदम शहु ओके राज एक फिल्म में फन्नानो गे नंत
3: फिल्म में फन्नानो गे
1: तेरे को मैं दिमाग दो
3: होनो
1: नुएं हमें भी रमिवाग होते कि मैं वारे किनो फंडना नोंगे भोरी माजू फोबू ऐमें फोन ती बेरी फिल्मों के मैं होंगे तब नंतर किया लेना मैं स्विस करने
3: का
1: मैं महामा मैं फहर दें रंगर गो है नोंगे क्या नहीं है नुएं गो है बुना कब बैंड में नुछ ऐमें राया वाणी दे मिहार कंगे ऐसे मैं फहोगे फिल्म तब बाला फंडना ना कहाँ हम
3: यस
1: इम्मे कमुदा फंगे तेरे के मिहमेने ने राज्य के कौन फंडना नो ने
3: मिहार वाला अज्जा उस कम अब दोस्त हो दें दें शराफ दें
1: अज्जा
3: वालों में बहुरी
1: शराफ फंगे ओके कौन का जॉन रे के फिल्म तक मैं आने के तो करने बोला बालं कामों दानी बिरुवेरी बानों ने कॉमेडी बानों ने लोबी के सोशल एवेंस कौन का फिल्म तक के बोला राय एक कामों दानी बाला आलम
3: राय कामों दानी आम को होरो
1: होरो कामों दानी
3: या वाला होरो मूवीज बाला है वे
1: मैं और मैं कुरियंग इत्ता अंग मिसाल का फिल्म कौन कुलें चांस ले बुने हो रहा है राय या अमिल्ले फिल्म ही दायर है नुकुरना कम बार में कौन जॉनर है तजुर्बा को लम बेनु मणि
3: राय बेनु मणि होरो मूवी
1: होरो मूवी
3: या
1: कुले हिवे तो फिल्म मणि का
3: कुले अने मैं चांस ले बिजिया मुंग डिपेंडिंग ऑन द You know, role, I might consider him.
1: Consider the Kura. Yeah. That's what I'm going to comment. That's what I'm commenting.
3: No, I'm going to go
1: to Okay, okay. Hey, Mima, Raja's film is coming. I'm going to release my release. I'm going to film the Raya Balaf. I'm going to be a premiere guest Raya Baddal. I'm going to be a premiere guest. I'm going to film the film. I'm film the film. I'm going film
3: हाँ तो गुस्सा आ लगे थे
1: वारा फंसे हैं वन वारे किन्होंने जवाब
3: मागे भी टुगे वेडिंग
1: ಫಿಲ್ಮ್
3: ಲೈಬ್ರರಿಯ
1: ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ಲಾವೆ ಹಿಂಗ ಆಡುವ ಹಾಲಮ್ಮ.
3: ಎಸ್.